0: अमवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
1: भार्गव कंटिन्यूइंग आवर ब्यूटिफुल जर्नी इन टू द रियलम्स ऑफ पुरुष सूक्तम एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट एसेंस ऑफ दिस एज द ट्रू सैक्रिफाइस सो लेट अस प्रोसीड इन टू द नेक्स्ट फ्यू वर्सेस ऑफ द पुरुष सूक्तम फर्स्ट वी विल चैंट द लाइन्स एंड देन गोइंग टू द मीनिंग्स एज सच बिकॉज इन द प्रीवियस एपिसोड we were actually trying to elaborate upon the first four verses
2: first four verses yes okay

गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।

आज के इस शुभ अवसर पर अखिल विश्व साई मां के जगत जननी स्वरूप की आराधना कर रहा है। इस नवरात्रि का मूल भाव यही है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही नवरात्रि है। हे साई मां, तुम ही गौरी के रूप में समस्त जीवों का पालन करने वाली हो, दुर्गा के रूप में जगत की प्राण शक्ति भी तुम्ही हो। हे साई जननी, मां काली के रूप में तुम्ही संसार और समस्त हमारे असुर शक्तियों का संहार करने वाली हो। इसके पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत है राग योग में एक तराना, जो कि बद्ध है 3 ताल में।

ना यहां रूप ना श्रृंगार अमर रहेगा, ना धनी धन का ना भंडार अमर रहेगा। जो आया है वो जाएगा एक दिन, लेकिन साईं का साथ साईं का प्यार अमर रहेगा, साईं का प्यार अमर रहेगा। उसी साईं मां के कोमल चरणों में प्रेम पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ अगला गीत, जय जय जगजननी देवी।

मोक्षार्थजन्मनिभिरस्तसमस्तलोषैर्विद्याशिसा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिकासु विमरदतिषाम् निधानो मृद्गी कथम्य पदपाठवता।